जाओ जाओ कसाके तुम्हारा मखन श्याम चुहते यन कमो ओ बिन मक्ष वन लाव ये